0: कुलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूक्षाने ने रजकले मंदे मंती तो नाम मत आकाश के आराम पिस्तले का मुझे दिखूं क्यों चला रहे हैं म्याना का टीम म्याना का काम रहे हैं टीम म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन दे जान मंती तो नाम मत आकाश के आराम है ये जन दे रिस के जान वा ना जब फिक्री जान मान लेकिन फिर से देसाना को दे मनारा का ना वो सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नहीं दे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सेंस आप दे दे
2: क्या ना काफी ना सु तो फटा रा कौन सा ये ले फिर ना काफी ना जाने मासूत सा वो ना चार चार ले तीन रो पिया के
3: नंबर saya nak buat apa? Suatu jenis maaf terlepas. Suatu suatu sahaja le suatu. Suatu saya nak fikir. Timnya nak cari satu mata titi walasah sijam susah sih walasah cakap ni sendiri. Saya mampai yang naza yang zaman tu ni mampat naza rakun sih. Tapi tanjung nanti tunggawan ni.
4: Saya nak fikir suatu. Le ulan ada tungsa. Apa ni? Tiko nak ni ciri arah tempat nane tiko. Arakan panrin we tei teta Madagascar. De sutun mitso san. Ye fankerezana wasre de mafinasha ne tonareo fa tena we makafit ko antilus mamtsik ti izay tena we tsimanatsal ti izany e. Ye tsimtoviny any velan fa manana netsika manokana tsika.
0: Shota tumpkula, shota tumpvava.

0: तुमको लाश तुमको वाभी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी क्या बोलूँ ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारू जानवे मानो फेरुवना जान जो के चीन या दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज या जाऊँ रे जाई लांजा इकोनॉमिक जाई आफाना मापनरुस न्यूल्ला मंदितना वालंजा वापुआरे आफाना यंचु मेचर का फावे निफिशीना वालंजा वापुआरे ते चफानेरेना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनान्फ